0: में जो वन चौवन देखी
1: हेलो
0: रखा गाबे सिन्ने वन चौवन देखी हमरा सबै ओरा पर गाउ घर चारै तिर वन चौवन देखि कठै बरा हरि हर तैन गाउने खेल्ने भक्तजन को र ओरा पर गाउ घर सबै तिर नारायण।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: Mania, Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो साइलेंस सामुदायिक एफएम बैंडमा थपलो 7 मेगाहर्जबाट म पत्र प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुलाई 27 तारीख श्रावण 11 गते सोमवार त्रयोदशी तिथि अब स्तुति गरौं आयु त्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पे भरी

मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिन्नपा 3 तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर बिमल दश जोदायको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानी के सुनि र पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हर कलेश विकार। ओम जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपिस्तुम्लो उजागर, रामदूत अजुल्त बलधाम, अञ्जनी पुत्र पवन सुतनाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार्य स्मृति की संगी, कंचन वर्ण विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ बरजाओ ध्वज विराजई, कांधे मुझे जने साजई, शंकर सुमन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया, विकट रूप बदल लंगा दरवाया, हेम रूप दरी असुर संहारी, रामचंद्र की काज संवारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हर्षियुर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतम भाई, सहज बदन तुम्हारे जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, हेम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्री भई किना, राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताई मधु फल जानु, प्रभु मंदिरी का मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुबारे तुम रखवारे, वतन आज्ञा बिना पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हागते कापे, भूत पिता से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तब श्री राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगद जियारा, साधु संत के तुम रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारी, अष्ट सिद्धि नमन निधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रघुपति के दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता चिदन धरई, हनुमत से ही सर्वसु करई, संकट कटई मिर सब पीरा, जोश मिरई हनुमत बलबीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छुटी बंदी माँ सुख हुई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, किजनाथ हृदय महडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसुंस रूप, शिवर रामचंद्र शंकर जी बजा, जय हनुमान जय बजरंगबली।